0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: ए बा आई गई क्या आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
2: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन के ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मित्र कस्ता राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
1: ठिक गरिबा, आफैबाटै सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
2: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हितो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे।
3: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्राओ लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रन यह सूचना से जानकारी कराइती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा एघारमा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
1: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा एघार अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्त शास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
1: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
1: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ।
1: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
2: ए रुक रुक रुक,
3: के भयो, किन कराएको यस्तो?
2: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड
4: रेटमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
2: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
5: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
6: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
7: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
8: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
0: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शीर्ष सदस्य महानुभाव हुक्र संस्था के शीर्ष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लक संपर्क नंबर 091-520-283।

0: राम इलर काफे कब्बू का पी रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कही था कब्बू पेंसिल हेरा कही था कब्बू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अब देखि टीकापुर अस्पताल में मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महीना को दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: ससानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मन में एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 9 गते 16 गते र 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला
3: टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
5: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
6: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा भिडियो एक्सरे सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ
5: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 2 जेठ 6 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
6: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 जेठ 7 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
5: एकनगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 1 जेठ 8 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
6: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
5: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
6: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने फुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्दिर हलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से सरकार से विस्थापित सुकुम्बासी उपकरण पुनर्स्थापना के लग प्रति परिवार 25,000 प्रदान करना। कर्णाली मावि टीकापुर में शैक्षिक सत्र 2082 में कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय हुई विद्यार्थी उपकरण पुरस्कार वितरण। हुमला के नेपा गांव में बाढ़ पहिरो में पर्के विद्यालय भवन सहित गोठो छेगरी समेत पहलो आज फेसुर पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश में तातुल हवा की संभावना। पूरा खबर कर्णाली मावि टीकापुर से शैक्षिक सत्र 2082 के कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय हुई विद्यार्थी उपकरण पुरस्कार वितरण करल बा। कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय हुई विद्यार्थी उपकरण बिहान के प्रार्थना हुई बेर आगे बोला के पुरस्कार वितरण करल के हो। सहकर के कर्णाली मावि कक्षा 10 में 3.6 जीपीए से ऊपर लानल 10 जन विद्यार्थी उपकरण पुरस्कार और खादा से सम्मान करगिल बा। सम्मान करती प्रधान अध्यापक धर्मराज शर्मा से सकू एसई उत्तीर्ण विद्यार्थी उपकरण बढ़ाई डेहल बाट सम्मान लेती विद्यार्थी उपकरण कर्णाली मावि रहस्यम चरित्र निर्माण में ढेर सहयोग मिललक बटोईदी विद्यालय परिवार है सदीमान समझती रहना बटोईले बाट। सरकार से सुकुम्बासी बस्ती में विस्थापित हुई उपकरण पुनर्स्थापना के लग प्रति परिवार 25,000 रूपया प्रदान करल बा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंह दरबार में बैठल बैठक से मंत्रिपरिषद बैठक से काठमाण्डू उपत्यका लदेक किनार में रहल जोखिमयुक्त बस्ती हटैना विस्थापित हुईना व्यक्ति उपकरण के विवरण रुजू करके प्रति परिवार पुनर्स्थापन बापत के समेत 25,000 रूपया एकमुश्त प्रदान करना सरकार के निर्णय हुईल। प्रवक्ता सस्मित पोखरियल जानकारी दिले बाट प्रवक्ता पोखरियल से जोखिमयुक्त बस्ती में हटाईलक हुकरण वैकल्पिक बसोबास के व्यवस्था करना प्रोत्साहित करना 5 सदस्य रहल परिवार हुकरण राहत रकम 15,000 प्रति महीना के प्रदान करना जानकारी दिले बाट उस तक विस्थापित रहल सुकुम्बासी परिवार के समेत वृद्ध अशक्त ओसके असहाय तथा आपन व्यवस्थापन करना निश्चेकना व्यक्ति के परिवार हुकरण टोकल होल्डिंग सेन्टर में धरना मंत्रिपरिषद बैठक से निर्णय करल बा। असंग बाल बालिका तथा विद्यार्थी हुकरण के पढ़ना लिखना तथा विद्यालय के सुनिश्चितता और स्वास्थ्य सेवा सुविधा के सुनिश्चितता में स्थानीय तहसंगे समन्वय तथा सहकार्य करना सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री पोखरियल बटोले बाट मंत्री पोखरियल से बैठक में नगरपालिका के राजस्व अभिवृद्धि परियोजना के लाग स्विटरलैंड के सरकार से प्राप्त होना 6.116 मिलियन स्विस फ्रैंक अनुदान समेत स्वीकार करना और अरनिको राजमार्ग के मरम्मत सुधार करना चीन सरकार से प्रदान करना 79.36 मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार करना निर्णय करल बा। मंत्रिपरिषद के बैठक से प्रत्ययन विधायन 2083 स्वीकृति करना सैनिक सेवा 6 संशोधन नियमावली 2083 के स्वीकृति करना नेपाल सरकार कार्य विभाजन के नियमावली 2083 अनुसार हुईना राजपत्र में अंकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव उपकरण के दरबंदी मिलान करना और पदस्थापन करना लगायत के निर्णय करल बा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछे फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना सिटीभिटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना, सामान्य चिकित्सा HA 40 जना, नेत्र विज्ञान OA 40 जना, डिप्लोमा इन फार्मेसी DPF 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
2: भर्ना कार्यक्रम
1: अनलाइन आवेदन फारम वितरण सुरु 29 गतेदेखि।
2: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार।
1: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र। अनलाइन आवेदन फारम www.cetvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SEA कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
2: आवश्यक कागज पत्रहरू
1: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति,
2: जन्म दर्ता, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि,
1: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि,
2: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो,
1: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस।
2: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर।
1: सम्पर्क नम्बर 0969900044, 9858700044, 9847202740, 9642831921 र 9669963520।
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
5: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा कानून, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी र खेलाडीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू:
5: फराकिला कक्षाहरू,
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
6: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
6: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 9854424167।
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
7: विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 2, जेठ 6 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1, जेठ 7 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 1, जेठ 8 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नम्बर 6, जेठ 10 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 9, जेठ 11 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
8: रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। कैलालीमा संचालित राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा 4,899 किसान आबद्ध हुलबाटै जिल्लामा संचालित गहुँ सुपर जोन, तेलहन जोन, सक धान जोन हो मच्छी जोनमा फेसमेट कार्यक्रम कृषिमा आबद्ध हुलबाटै चालू आर्थिक वर्षमा 82-83 चारथो जोनमा 3,081 महिला हो 1,808 पुरूष आबद्ध रहल। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कैलालीके सूचना अधिकारी भीष्मराज रेग्मी जानकारी दिएबाटै चालू आर्थिक वर्षमा कृषि सहकारी औसक कृषि समूह कृषि उद्यमी हो सीमित करके 463 संस्था स्वीकृत समेत हुई जानकारी करागिल बा। वहां के अनुसार हाल गहुँ सुपर जोन में 7,200 हेक्टर सक तेलहन जोन में 1,500 हेक्टर हो धान जोन में 1,500 हेक्टर हो मच्छी जोन में 505 हेक्टर क्षेत्रफल में संचालित रहल बा। सूचना अधिकारी रेग्मी के अनुसार कार्यक्रम संचालन हुई पाछे गहुँ के उत्पादकत्व में 2.9 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर में वृद्धि हुईलक वो हाल 4.6 में समेत लाही उत्पादन तो में 0.9 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर समेत वृद्धि हुईलक 1.23 धान के उत्पादकत्व में 3.47 समेत वृद्धि होके 5.31 मैट्रिक टन समेत प्रति हेक्टर पुगल बतागिल बा। संकर के कार्यक्रम संचालित क्षेत्र में कार्प जात के मच्छी उत्पादक को 4.7 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर समेत हो पांगसियान के समेत 36.2 मैट्रिक टन हो प्रति हेक्टर रहल जानकारी करागिल बा। गहुँ सुपर जोन में समेत जिला के कैलाली गांवपालिका गौरीगंगा घोड़ागोड़ी नगरपालिका के 18 ठो टोल में तेलहन बाली में जोन में जोशीपुर जानकी गांवपालिका भजनी नगरपालिका घोड़ाघोड़ी नगरपालिका और बर्दगोरे गांवपालिका के 29 ठो वाड़ा में हो धान जोन में जोशीपुर गांवपालिका भजनी नगरपालिका और जानकी गांवपालिका के तमाम 9 ठो वाड़ा में संचालन रहल जानकारी दिले बाटै। मच्छी जोन कार्यक्रम में धनगढ़ी उपमहानगरपालिका कैलाली गांवपालिका घोड़ागोड़ी नगरपालिका और भजनी नगरपालिका के क्षेत्र में संचालन में रहल जानकारी दैगिल बा। हाल नेपालमा पश्चिमी वायु स्थानीय वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। जेकर प्रभाव से हाल देश के पहाड़ी और हिमाली भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा। बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफा रहना बा। आज दोपहर के कोसी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश लगायत के लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के हिमालय और पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बा। बाकी प्रदेश के हिमालय और समेत पहाड़ी भूभाग में आंशिक मौसम बदलना बा। कलसे बाकी तराई भूभाग में मुख्यतया मौसम सफा रहना बा। दार्चुलामा एक प्रधानाध्यापक हे आत्महत्या करना बाध्य पर्लक आरोपमा प्रहरी से 8 जने पक्राउ परल बा। ब्यास गाउँपालिका 4 स्थित सम्पाल माध्यमिक विद्यालय के सुनसेरा प्रधानाध्यापक बलदेव सिंह धामी के विद्यालय में झुरके मृत फेला परल रह। घटना पाछे प्रहरी से अनुसंधान आगे बढ़ी तिरहलो 8 जने नियंत्रण में रहलबा। पकड़ाउ पर्नामा महाकाली नगरपालिका एक के 32 वर्ष के विक्रम सिंह कुंवर वार्ड नंबर 2 के 52 वर्षीय समेत दली दत्ता भट्ट उसके वार्ड नंबर 5 के 42 वर्षीय खिमानंद भट्ट ब्यास 4 के 57 वर्षीय प्रमानंद भट्ट 39 वर्षीय पदमराज भट्ट 43 वर्षीय नरेन्द्र दत्त भट्ट 59 वर्षीय हरिदत्त भट्ट तथा बैतडी पाटन नगरपालिका 4 के 40 वर्षीय पुष्पराज भट्ट रहल बतागिल बा। हुम्लाके नेपका गाउँमा आयल बाढ़ पहिरोमा पर्के विद्यालय भवन गोठ ओस्ताका छेग्री भेरीमा फेर भारी क्षति कैल रातके पर्लक पथरा पानीके बाढ़ से दाफे आधारभूत विद्यालय पोहाइलबा उसका खेती योग्य जग्गा गोठ बाढ़ से क्षतिग्रस्त रहल प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त होलबा। चखेली गाउँपालिका पाँच के स्थानीय छक्क बहादुर तामाङ के अनुसार वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ ओ धनसिंह तामाङ के समेत गोठ बाढ़ से भट्टरगिलबा कलश से गोठ संगे छेग्री भेरी मा समेत क्षति पुगल बताएगिलबा। जिला प्रहरी कार्यालय हुम्ला के प्रमुख शंकर खड़का के अनुसार गैल रात के करीब 11:30 बजे बाढ़ पहिरो गैलक ओ घटनामा मानवीय क्षति भर नै हुल प्रहरी से जनाइलबा। खोजखबर माए गरी विश्राम पाछे फेर से भी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
9: टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको छैटौं साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
10: टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको छैटौं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू र संस्थागत सदस्यज्यूहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। कुनै कारणवश पत्र नपुगेको भए यसै सूचनालाई आधार मानि तपसिलको मिति स्थान र समयमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
9: साधारण सभा हुने मिति
10: 2083 साल जेठ 9 गते शनिवार।
9: स्थान
10: टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभा हल।
9: समय
10: बिहान 11 बजे।
9: चुनावी सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू
10: हालको विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा, कार्य समिति गठनको धारा 16 को उपधारा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा।
9: थप जानकारीको लागि
10: टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालय फोन नम्बर 091-560-174।
11: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा, कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी, कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक, पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खाऊ है।
12: यदि तपाईँ अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 98584-89455 र 98673-69622।
11: रियल मिल्क, रियल आइसक्रिम, अमूल्य आइसक्रिम, खोजी खाऊ, यी ब्रान्डका आइसक्रिमहरू जहाँ पनि उपलब्ध छ।
0: सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेको सेवा प्रवाह, सम्पादन गरेको काम कारबाही र गाउँपालिकासँग सम्बन्धित विविध विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्ने तय भएकाले तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा सरकारवालाहरू तथा सेवाग्राही, राजनैतिक दल, गैर सरकारी संघ संस्था, वर्गहर, नागरिक समाज, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, संचारकर्मी एवं सम्पूर्ण जानकी गाउँपालिका वासीको गरिमामय उपस्थिति तथा सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 8 गते। समय दिउँसो 1 बजे। स्थान वडा नम्बर 8 को कार्यालय जबलपुर कैलाली। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय दुर्गौली कैलाली।
13: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
14: मई नहीं जाय। वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
13: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
14: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, टपटू में अब भी जाय।
15: याद गर्बी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
0: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
15: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846777417।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मा के नाउ सर्वसम्मत अनुमोदन करगिल बा। सोमवार के बैठक सांसदीय सुनवाई समिति के बैठक से वहां के नाउ अनुमोदन करके हो। समिति के मंगलवार के नई सुनवाई करगिल बा। सुनवाई हुई पासे समिति के प्रधान न्यायाधीश मां शर्मा के नाम अनुमोदन करना निर्णय करल के हो। प्रतिनिधि सभा के बैठक आज बिहान के 11 बजे मंगलवार के बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष में विनियोजन करलक विधेयक सिद्धांत और प्राथमिकता में कर प्रस्ताव बाहेक के छलफल करगिल कलशय छलफल में उठल जिज्ञासा ऊपर अर्थमंत्री डाक्टर सोनिम वागले जवाब समेत देहल रहे। यी प्रस्ताव में सोमवार से लेके छलफल शुरूआत करगिल रह गैल बैशाख 31 गते बैठक में अर्थमंत्री डाक्टर वागले ऊ सिद्धांत प्राथमिकता में प्रस्तुत करगिल रह। खुला प्रतिस्पर्धा से उपकुलपति नियुक्त हुईना हुईलवासे कंचनपुर के सोरपासिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लग 19 जाने आवेदन देहलवाट सोरपासिम विश्वविद्यालय में काम करते रह प्राध्यापक से लैके मुलुक के तमाम शैक्षिक संस्था में कार्यरत से लैके सेवानिवृत्त कर्मचारी हुक्रा उपकुलपति के लग आवेदन देहलवाट गैल बैशाख 25 गते विश्वविद्यालय में रिक्त उपकुलपति नियुक्त केलक सिफारिश करल समिति के दरखास्त आह्वान करल है। सरकार के अध्यादेश मार्फत उपकुलपति हुक्रा पद मुक्त होल पासे हाल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के दैनिक कार्य संचालन करना खुला प्रतिस्पर्धा से उपकुलपति नियुक्त नहुसम उपकुलपति के जिम्मेदारी प्राध्यापक यज्ञराज पाठक के दैगिलवा पाठक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के प्रवर रजिस्ट्रार रहल बाटे। शिक्षा तथा युवा खेलकूद समिति समेत के खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल के सचिवालय के अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लग एक महिला सहित 19 जाने आवेदन देहल। सचिवालय के अनुसार मुलुक में 8 विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लग 200 से ढेर आवेदन पड़ल बा। आज से नियुक्त प्रक्रिया के काम आरंभ हो सकलक सचिवालय से जनायल बा। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सरकार से विस्थापित सुकुम्बासी उन्नयन पुनर्स्थापना के लग प्रति परिवार 25,000 प्रदान करना। कर्णाली मावि टीकापुर में शैक्षिक सत्र 2082 के कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय हुई विद्यार्थी उन्नयन पुरस्कार वितरण। हुमला के नेपका गांव में बार हो पहरो में विद्यालय भवन सहित गोठ हो छेगरी भेरी पुहनाई हो। आसपे स्वरूप पश्चिम के ओलुम्बिनी प्रदेश में टाटुल दिन हुना संभावना। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनते रह विराम।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि व्हील देखले से हिंसा विरुद्ध

0: नरेश दादु मैं तो अपना फोन आई की डर से आ गई नो है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोंदी में सुतल बाटी बाबू चोली ना भरी
0: भौजी कहाँ से काटू न अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने लो बाटी तो तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली को कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
0: ना ते भौजी हमरो बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिंसर एक दिन वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के कोई मोटरसाइकिल बाक ना छे उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खैलो जात फे दिहे न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम जरमेन कुछ से खवाई हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनिना प्रयास खन पठा तम्म कस बिनक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकलसे फाफर करारी गेरमने अपेले से झन समस्या बिना बिल कोसे गेरमने आना शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ीले कस खबर नाके कठा असिक करना से लक्त संसार में समस्या हुई सिक्ठा जेहीले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता मनाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: पर कान्छाशालाको बिहाको न्यू त आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
7: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइजन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो
6: यतिकै लागि त सामुएल जोलस बनेको हैन बरु अहिलेै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
7: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो छोट त बाई जाउँ
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868442108 9846349261
9: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
10: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
11: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
9: डेलिभरीका लागि
11: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
9: टिकापुर कैलाली
12: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870101672
13: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
2: अनि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका अंश कि कत्रा सुघर बनाएका अनला बाटी
2: ए ले ले ठिक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बर बर रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल हेरे थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार र बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: सिकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरकारवाला ज्यूहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
2: कार्यक्रम छोटमिट साता के बुधबार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
3: जब देखनो तो हिन है।
2: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0991-5162555 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिसरे भी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मिटिया सलाक के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग अपन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत मिशन भाई टेक में बैठ के साथ दे रहे भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपन के अपने संग्रह माई मिशन सगारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आस में बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यापार में यात्रा में जे जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी ठाव से कार्यक्रम के संगे संगे यात्रा कई देवी कना मैं अपने जानकारी कहना चाहता हूं जे जहां हुई भी कार्यक्रम में ऐसे कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन ऐसे कर भी कार्यक्रम में चाहे विशेष करके कॉल कर भी तो कह भी मैं ई गीत सुनना चाहता हूं गीत के बोल बताई दी स्पष्ट रूप में गीत मन पर्ना दुई ठो कारण हो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के हो सक गीत नाम बताइबी नहीं तो गीत के बोल अनिवार्य और दुई ठो कारण बताइबी कल से गीत हम सुना पाओ अंतिम में एक जनहन के नाम ले भी पूरे नाम आपने हमके आधे नावले थी जस्ते राम राम प्रसाद चौधरी नाम बाकल से राम हे सुने न चाहतू कहे कथी वैसे नहीं राम प्रसाद चौधरी सक हे सुने न चाहतू कहे पूरे नाम ले भी का नाम है अनुरोध करती कार्यक्रम में सहभागी जना का हम सुनने का नाम भी 5 61 255 अर्थात 0915612555 लाइन खुले हुआ कार्यक्रम में सहभागी जना इटे कर भी कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गणेश कर एक रमाइलो गीत से गीत के बाद से मैंने बात डाल करते कर भी सुनने का नाम 5 61 255 लाइन खुलेगा।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो सजना गीत जोड़ी हमार संस्कृति हमार पहचान इके हमार बचाए पना हमार सबको जन के अभियान बिल्कुल मेहन लागत ही हमार संस्कृति और संस्कृति से जुड़ल चीज हेरी ना हम गीत सुनती की कार्यक्रम में ऐसे लागे लागल की हमार रंग रंग में अंग अंग में चढ़े लागल उ संस्कार अगे कोई टेलीफोन लाइन में आल बटे में बोल करना चाहम के कहा से शून्य एकानबे 561-255 के लाइन में अपने को डायल करते कर भी 091-551-255 के लाइन। हजुर राम राम। कोई टेलीफोन लाइन में नहीं हुए लागत में तो आप लोग चाहे डायल करते कर भी 091-551-255 था 091-561-255 लाइन एकदम खुला बा संगारी लगभग खेती किसानी के समय आए लागल पानी तो अभी नहीं पड़ते तर आज और दिन से लगभग बद्री रहना दू चार दिन बद्री रहना बा तर पानी चाहे पर्ना नहीं हो बद्री रहना बा कह के मौसम विधो के जानकारी कहले बाटे अब हेरी कसिन हुई तर बदर घाम बा बिल्कुल घाम बा गर्मी बा अपने ठाव में कसिन बा टीकापुर आसपास टीकापुर में एकदम गर्मी बा अपने ठाव में कसिन बा कथक गर्मी बा बद्री बा मैंने हवा चलता कि नहीं चलत हो कसिन बा अपने हमारे संगे शेयर कराए गप कराए बात कराए 091-551-255 के लाइन हमारा खुला कैले बाटी जे जहां रवि कार्यक्रम में सहभागी जनाएक लग हरेक साता के सोमवार मंगलवार बुधवार और बिहार हमारे थी तो हमारे सोमवार के दिन विशेष करके निशाना लगाई आई थी उसके मंगलवार के दिन कार्यक्रम अंताक्षरी अपने कलक उसके के बुधवार के दिन जो हो आज आज एक दिन चाहिए अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल थार भाषा के गीत सुनाए सुनेने रखी हमने अपने उसके रोजना रोजक पाना रहत रोजल गीत हमने सुनाई थी उसके बिहार के दिन कोई भेटारण कोई भी प्रतिभा सुनाएक लगे थे ओके कार्यक्रम आई कर भी आज हो अपने के रोजाई में पढ़ना गीत सुनना हो गीत सुनाई भी डायल करते कर भी सुने का 091-551-255 फ्रेंड्स इंजॉय कर अब ठा रमाइलो गीत से गीत के बाद समय ने बात डायल करते कर भी सुने का 091-551-255 लाइन खुले बा
1: बसंत बरखा हरेक ऋतु में चाहे सुख होस या दुख के बादल बस तोरे साथ और हाथों में तोर हाथ रहोस कसम से इ धरती इ गगन के आप तो तोर संगे जीना तोर संगे मरना तोर संगे लड़ना छे जिंदगी के डगर

हजुर, अब तोर संगे जीना छे, अब तोर संगे मरना छे, जिंदगी के डगर में बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोले अपने कनकला पूर्वेली थारू भाषा के गीत रहे। अघि कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खरलो विकास यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज, जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org लगन गरेको पानात कलेसे, जस्तो कि हाम्रो मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स, हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत सुनिसक्ने इन्टरनेट के पहुँच रह सँगारे आफ्नो ठाउँ छ आफ्नो ग्रामन कल गर्बी, जहाँ इन्टरनेट के पहुँच बा उठाउँ सामान सुनि सक्बी, जहाँ इन्टरनेट के पहुँच नै हो गले चाहिँ जहाँ रेडियो टिपा थ्री गले चाहिँ आफ्नो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मोबाइल सेट रेडियो सेट मार्फत सुनि सक्छ। ठिकाना मैं आपको जानकारी कति बार तो कार्यक्रम में सहभागी जनाइटे करबी, कार्यक्रम आइटे करबी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही, रमाइलो गपी अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनाइटी हमारे आज के दिन विशेष करके अपने कान तो जहां हुई भी जोन ठाव में हुई वह ठाव से अपन कॉल कर भी सुनने का 95-61-255 का लाइन खोलेगा 0915612555 ई नंबर हो, ई नंबर में कॉल कर दिया और कार्यक्रम में सहभागी जने भी संगारी दोपहर के समय अलसी समय, अलसी समय है कुशल सम रमाइलो करेक लग, अलसी समय है कुशल सम रंगीत करेक लग, इस समय है अपने को हमार संगे संगे सही यात्रा करेक लग, रमाइलो करेक लग, इस समय है कुशल सम दूर भगाएक लग, ई गर्मी महीना में जुरार जुरार महसूस करती मजा मजा के संगीत सुनाई और अपने संगे गप कराए पुगल बाटू। ओके, डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाइते कर भी ठीक ठाक गीत जोड़ गीत के पास समय नहीं बाटू, डायल करते कर भी 0915612555 लाइन खुल।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडी आफ्नो गणकला कार्यक्रममा बाटोमा मिसनमा साथ दिँदै भाइ आकाश और यो रेडियो टिकापुर एफएम भर्खर रेडियो खोरली विकास सोसाइटीबाटी रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तै कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइसकेको थियो। कोही टेलिफोन लाइनमा घण्टी बजार सकलबाटी साथमा उहाँ है बलकारम के हुँदै कहाँ चाहिँ बलकर्न छाटौँ। हजुर राम राम
1: राम राम हजुर राम
0: नारायण जी कैसिन बा हाल खबर
1: बढे बात क परल घाम बा क परल
0: आज बड़ा जोरदार घाम बा नहीं
1: हजुर
0: काल से एकदम जोरदार घाम लगती बा वही आज फिर घाम बढ़ल बा की लागल लागत कैसिन बा कहर से अब ठक के कौन ठाव से फोन कैली हमाना भाई नारायण जी राजीपुर से हम समझली नहीं आज हवा हुआ चलता कि नहीं तो बाहर नेंगटी अपने डगरी में हवा हुआ चलता कि नहीं
1: चलता कपल
0: ओके
1: चलता
0: तरफ बड़ा जोरदार गर्मी बने
1: हजुर
0: ओके
1: मौसम राजापुर घामे में राजापुर घाम अल्पी लागत नहीं जाए
0: ए मतलब गर्मी के कारण राजापुर जैना मन नहीं लागल हो
1: हजुर
0: ओके
1: अपन लोड करने से इतना है काम सब मारे
0: अपन स्वास्थ्य एवं ख्याल कर के काम करे परत नारायण जी नहीं
1: अब
0: स्वास्थ्य ख्याल करके काम नहीं कर भी तो फिर दुख मिलत तब मारे अपन स्वास्थ्य पे ख्याल करके काम कर भी कना मैं अपनों का बारम्बार जानकारी करती बात रथ हो और कहम फैन नहीं ओके कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल आज अपने है रोड दिन हम गीत सुनई थी नारायण जी आज हमरे सुनाब अपने है कौन गीत सुन भी
1: अब अपने को सुने भी सुना दी तो
0: कौन गीत सुन भी बताई
1: अब कैसी नटती नटती

0: मटरी पुगल कञ्चनपुर दैबरवा धोका देलो नै ओके गीत हाम्रो सुना वाला गीत मै नै समझ पैनु काहे कि आप गीत के बोल किलर रूपे मतलब समझावट आप गीत फेन सर्च करे बनत खोजे बनत नै ओके गीत हाम्रो सुना मटरी पुगल कञ्चनपुर दैबरवा धोका देलो दैबरवा धोका देलो गीत हाम्रो जोडम यी गीत मन परे पर्ने के कारण फेन बताएको परत नारायण जी काजे गीत मन पर्छ
1: गीत सुनबो त मनोरञ्जन है चौकस लागत कहाँ परल हो
0: बस सुन्न मन लागत हो
1: हजुर
0: किन सुनैबी एक जन हमके नाम ली
1: अपन परमिला मैडम
0: ओके परमिला चौधरी मैडम है सुनैन चाहती ओके अब अगला विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: वहाँ फोन करे रही नारायण जी हमार नियमित कलर नियमित चाहिँ हमार संगे संगे बात बताई थे और हमार नियमित समझती रहे वहां के फरमाइश के गीत बा मटरी पुगल कञ्चनपुर दैबरवा धोका देहलो हमने गीत जोड़ा शुरू गीत का नहीं गीत में नहीं समझ पाइन का गीत रहे खाई ठैक मेहन फिर याद नहीं हुई तर वहां है याद बारी ना शायद कहूं गीत के बीच से का नहीं कि शुरू से का नहीं कि आई मीन पता नहीं हुई चेकल कोई बात नहीं हमने मटरी पुगल कञ्चनपुर गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.2 से बस सुनने का लाइन खुलेगा

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली कार्यक्रममा अपनेगनका सँगै हामीले चाहिँ गप कर्तेबती और लगभग लगभग कार्यक्रम के हाम्रो मध्य समय पर क्रस कैसे ठीक व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गेल बा विश्राम व्यापारिक विश्राम के पास समय नै बाटो रेडियो छोड़के कहौँ पनि जेबी तपसँग एकैछि कोइलान मालबाट कि लागतमिन बल्कन छ हजुर राम राम ओके कोई बात नहीं हो सेम्बर के नंबर में कोई नहीं हुई कहूँ तो ठीक व्यापारिक ब्रेक ली ब्रेक के पास में नहीं बैठू रेडियो छोड़ के कहूँ फिर जेबी तब समझ एक व्यापारिक विश्राम
1: वह तो हेर बुढ़िया बरखा समय थे बा पखारिक मुँह का रूप कर बाकी मुसवा आयल कला से आबो मुसवा खुशी सब कुछ आई सकता
2: ओहो हो निका सब का समझनो बरख अंदर पादर झफास से बाहर से कत्था का तहिल बा काट पर ना रहो
1: हाँ अस्सी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो तेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर पर्यार मने मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं हुई
2: मीठा हो बुढ़वा असिन जाला मदर ध्यान घास फोहर झफास भी था आप नुख बैठल रह सकते ना
1: वह सेटर कलक हो छाई समीरा छावा विवेक दुओ मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मिलकर चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अना का कम हो जाये
2: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
3: सात बर्खा छाटक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
4: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
5: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
4: नयाँ वर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित कर्णाली माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 सालका लागि कक्षा 9 सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ तपसिल
3: प्रवेश परीक्षा फारम वितरण हुने मिति 2083 साल वैशाख 21 गते सम्म सीट संख्या 48 जना मात्र फारम उपलब्ध हुने समय बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म आवश्यक कागजातहरू कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र फोटो 2 प्रति
4: प्रवेश परीक्षाको मिति टीकापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा संघको समन्वयमा तय गरी जानकारी गराइनेछ
3: कर्णाली माध्यमिक विद्यालय टीकापुर 1 कैलाली प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा सम्पर्क फोन नम्बर 9898241467 र 091551411
5: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोस्ते संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई हिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लग संपर्क नंबर 091552383

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनाको माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ हौ तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरोला रोड टिकापुर कैलाली
5: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर्से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव हुक्र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कैगिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकलाक हार्दिक अनुरोध करती मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्य 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लग संपर्क नंबर 091-520-283

0: केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
1: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
2: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
3: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
1: डेलिभरीका लागि
3: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
1: टिकापुर कैलाली
4: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772।
5: स्वास्थ्यका लागि पानी।
6: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
7: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
6: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
9: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
10: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग दो
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाटा कोशिन हो कल से मई टर्च लाइट और लट्ठी दिए तू लेख जाओ
1: का चीज चुनू लट्ठी और टर्च लाइट
0: का करो रही दाई राटिक डाला बाहर निकल पड़ला से वा टॉयलेट जाए पड़ला से दहिया फिर टर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी देख के ना जाए पड़ता का करो की बरखा छेक बा सांप रह के था टर्च का उजाले सापन दिया खसेक दे था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूली मैडम सर मुख साफ मुख से इतना ठाव से न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से दहिया फेठ फुसिया भी पथा गई सीखे लाट का आम छठवा दिवा झपास अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्याग पड़ला से दम्मा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्याग पथा गई कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लग्घ आई सक विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
7: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब
8: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
7: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
8: कहाँ हुनु भाइ? टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ।
9: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
7: ल ल दिदीलाई धन्यवाद। अब त म त्यही जान्छु।
10: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
8: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848518 28।

टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के संजक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां करन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। गणतंत्र में स्थानीय सरकार के महत्व गरिमा व्यापक रहल राष्ट्रपति पौडेल के कहाई। सुकुम्बासी हुकरा विस्थापित सुकुम्बासी हुकरण पुनर्स्थापना के लग प्रति परिवार 25,000 प्रदान करती। कैलाली में कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम है 4,000 से ढेर किसान आबद्ध हो पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लग 19 जन के आवेदन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल मुलुक के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आशेगल पाछे स्थानीय सरकार के महत्व गरिमा व्यापक ग्रहण समय ठूल बटुले बाटे। सुनकोशी के कोशी गांवपालिका में निर्माण हुईलक लौकही सिटी हल समेत उद्घाटन समारोह के संबोधन करती वहां जनता की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता तथा चाहना अनुरूप के विकास के कार्य तीव्रता दई के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के मूल्य मान्यता हो आदर्श अनुरूप के समेत काम सवाल में समेत बनाई पर्ना में जोर दिले बाटे। राष्ट्रपति पौडेल स्थानीय तह जनता के सबसे लगे के सरकार अलग ओर से उल्लेख करती जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह करना सुविधा उपलब्ध कराना तथा विकास के काम संचालन करना स्थानीय सरकार के महत्वपूर्ण दायित्व रहल बतौले बाटे। कोशी के सप्तकोशी लद्या के किनार में रहल कोशी गांवपालिका के ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से फे महत्वपूर्ण ठाव रहलक उल्लेख करती राष्ट्रपति पौडेल सप्तकोशी लद्या के कुशा घटवा में प्रजातंत्र प्राप्ति केला क्रांति हुईलक ठाव

व्यवस्थाकै बसोबास अपना कर्ण प्रोत्साहन सहित पांच सदस्य रहल प्रति परिवार हे राहत रकम 15,000 प्रति महीना के दर से प्रदान करने जानकारी दिले बाटे। उसके विस्थापित अलग सुकुम्बासी परिवार के बुढ़ायल अशक्त असहाय तथा आपन व्यवस्थापन कर नहीं सकला।

0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका को कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चौक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालिस।

0: पठिना हुले से कुष्ठ रोग हुई सेक्ठा
1: कुष्ठ रोग महिला व पुरुष जेहेफे लाग सेक्ठा कुष्ठ रोग का शंका लगती की लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके जानकी तीन मानपुर में संपर्क करी
0: महिलाओं का अस्पताल सम आइकला को स्वास्थ्य परीक्षण कराइकलाक आपना घर पुरुषों का मदद करी
1: कुष्ठ रोग मुक्त समाज निर्माण का लाग साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके से जमही

0: आगामी जूनमा नेपालकै भ्रमणकर तिरना सुनगिल्वा विस्तृत शान्ति सम्झौता सर्वोच्च अदालतकै फैसला हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनैना विद्यमान कानूनकै तेस्रा संशोधन गर्लस फेन अभिन्फे कानूनी जिम्मेवारी बाँकी रहलबा। खोजखरमा एक घरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछे फेर्से एबी सुन्तिर बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: आइहो बड्डो घर कहिया छिर जइबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
4: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
2: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
2: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
7: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
8: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: विश्राम पासे फेरसे स्वागत बा। सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के तयारी करते रहल बेला निजी क्षेत्र से अर्थतंत्र के संरचनागत सुधार करके रूपान्तरणकारी बजेट लन्न सरकारले सुझाव दै गिल्वा अर्थतन्त्रकै वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्र से सरकारले सुझाव केल नै देल हो। एकरलाग पूर्ण रूपमा सहयोगी बनके आगे बढ्न प्रतिबद्धता समेत जनाइल्वा। राजनीतिक रूपमा सरकार फे लौ विचार सोच सहित रहलवा कलश सरकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघके फे लाओ नेतृत्व चयन हुआ। अर्थतन्त्रकै मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न विश्वास सरकारवाला हुँक व्यक्त गरलबाटै संघीय सांसदमा दुनु सदनमा विनियोजन विधेयकमा प्राथमिकता सिद्धान्तमा समेत पारित हुसेकलबा। संविधानकै निर्दिष्ट करलक अनुरूप समिति हजेट 15 गते अर्थमन्त्री से संघीय सांसदकै दुनु सदनकै संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नबा। विश्व फुटबल के चर्चित स्टार क्रिस्टियन रोनाल्डो के छैठौं पटक फिफा

0: विश्वकप खेलना पक्का होइल्बा। उमेर से 41 वर्ष पुगरक रोनाल्डो हे विश्वकप में पोर्चुगल टोली में समावेश करगिल्बा। प्रशिक्षक रोबर्ट मार्टिन से फिफा विश्वकप 2026 खेलक लीजेंट रोनाल्डो हे समेत समावेश करती पोर्चुगल टोली के घोषणा करगिलक हो। संगे रोनाल्डो के कीर्तिमानी छठौं पटक विश्वकप खेलना पक्का होइल्बा। विश्वकप फुटबल में अनेकौं कीर्तिमानी बनायल रोनाल्डो हे विश्वकप जीत के लौ कीर्तिमान रचना असर समेत पड़ल्बा। विश्व फुटबल में सकु खालके उपाधि समेत लेलक रोनाल्डो। अब विश्वकप में केल कीर्तिमान करना बाकी रहल्बा। रोनाल्डो यागे 5 विश्वकप में गोल करना खिलाड़ी में समेत रहल्बा। पाछक समय में यूरोप के व्यावसायिक फुटबल छोड़ के साउदी अरेबिया के समेत अल नसार क्लब में खेलती रहलक रोनाल्डो खेलक ई विश्वकप ने अंतिम समेत हुईना अपेक्षा करगिलबा। प्रशिक्षक मार्टिन से टोली घोषणा करल पासे रोनाल्डो मन से पोर्चुगल के ढेर संक्रा समेत पैलक अविन फे कुछ करना बटैती रहलक बाट। रोनाल्डो विश्व फुटबल के एक प्रतीक कप्तान रहल बाट। टोली के अनुशासन जिम्मेवार नेतृत्व के उत्कृष्ट उदाहरण समेत रहल बाट। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैन से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। गणतंत्र स्थापना में सरकार के महत्व और गरिमा व्यापक रहल राष्ट्रपति पौडेल के कहाई। सरकार से विस्थापित सुकुम्बा श्रृंखला की पुनर्स्थापना के लग प्रति परिवार 25,000 प्रदान करना। कैलाली में कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम में 4,000 से ढेर किसान आबद्ध हो। सूर्यपश्चिम विश्वकप के पश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लाख 19 रन के आवेदन। रीटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनती रवि राम राम
1: मोटरसाइकिल घुमाकर धरने करीना
2: बैठा बैठा रम्याना रसरसा मोर पास बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुई से नापिला को से पासा से पकड़ का बैठा पड़ता का
3: ब्रह्म्याना अगर हुईना कही के मई पकड़ के बैठा तू सुनील जी अपना जैसी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुईला कारण सर्पदंशक ब्रेमेन उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हिल बा
2: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पाजी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक तरफ से बाट सजिला से वो छत्त पाजिला से ब्रह्मन चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरक सुचा कर लगभग एंटी भेनम हिलक उपचार केन्द्र में लै जाय पड़ता
1: अपना हुआ जैनी करी ना मई द्वार लगा सके राजे
2: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
3: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
4: सफ डल डालन कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध हुई ना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सिर्दिथा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: घर त जेन्तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
8: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
7: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
8: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
7: अब त म ढुक्क।
9: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भार।
8: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
7: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
8: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा, टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
7: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
8: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
10: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
7: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
11: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
8: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848558।
12: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टिकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य र लकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टिकापुर कैलाली।
13: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: भाई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कतरा सुगर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को आइतबार बुधबार बिरामी जांच गर्न आउनु हुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखे।

0: सदस्य ओ भोगले से मौन नाइबेट बी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नाई लग्न नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
0: हिंसा अपने थेनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846939261
2: उपभोक्ता वर्ग में टीकापुर नगरपालिका को अनुरोध आफूलाई आवश्यक औषधि खाद्यान्न पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति मूल्य सूची लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं
3: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं
2: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको

0: फाटा सुगुर बनैलो बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए।
1: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।
3: ओहो आज त धारामा कति धेरै धमिलो पानी आएछ है।
4: अब वर्षा लाग्न थाल्यो। यस्तो पानीले त झाडा पखाला आउ हैजा टाइफाइड जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछ। त्यसैले पिउने पानी शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउनु पर्दछ नि।
3: हैन छोरी, यो शुद्धिकरण भनेको चाहिँ के रहेछ?
4: पानी शुद्धिकरण भनेको पानीलाई राम्ररी उमाल्ने वा फिल्टर गर्ने, सेतो प्लास्टिकको बोतलमा घाममा राख्ने, औषधिहरू राखी पानीलाई निर्मलीकरण गर्ने विधि हो नि काका। त्यति मात्र होइन, पानी राख्ने भाँडो सफा हुनु पर्छ, खाने पानी सधैँ छोपेर राख्नु पर्छ नि।
5: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
6: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
7: तयारी सुकुम्बासी बस्ती उठाएको

0: 455 र 98673 69 622।
1: रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम, अमूल्य आइसक्रीम खोजी खोजी खाऊं। यी ब्रांड का आइसक्रीम जहां पनि उपलब्ध छ।

0: कापिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर भर रही थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिप ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: का हुई कमल अहन बुक खाइल बाट उठ
1: एरी ने काका काई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो का देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटू
0: सब कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तारी प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सब कटलक हो कि हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
0: तर कुछ दिन कही आ तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्य चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छ संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी
2: रे बाबू संदेश रोक छत बाहर आता

कार्यक्रम हुने स्थान मूल कुला समितिको सभाहल, समय बिहान 10 बजे। सम्पर्क नम्बर 091-561-022। रानी जमरा कुलरिया सिद्ध भण्डार गिरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति, टिकापुर, कैलाली।